अस्सलाम वालेकुम सामने, सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 26 सितंबर प्रो 27 वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामना पाई नशरियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्ज के अलावा तुरसा 3 ईस्ट 4 वेस्ट समेत हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। सामने आज हमारे प्रोग्राम में अलग

तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिला और प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानियों फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा ये प्रोग्राम हस्बे मामूल एक घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपन।

उमर भी इलाके में फजाए हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 फौजी जनरल, 1 बच्चा भी शामिल है। नायब गवर्नर रेमी साकी ने हफ्ते को रिपोर्टर्स को बताया वह जहाज जुम्मे को क्वांगो सूबे के एक दारकूमत केंजे में गिर गया। साकी ने बताया इब्तदाई तौर पर हलाकतों की तादाद 13 बताई गई थी, ताहम जाए हादसे से 1 बच्चा समेत 17 लाशें बाजियाब हुई हैं। उन्होंने बताया छोटा तेहरा के कुवैत हवाई अड्डे से एक नाश्ता के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तकरीबन 15 मिनट बाद ही यह गिर गया, जिस पर इसमें आग भड़क उठी। फौज ने बताया हादसे का शिकार होने वाले दोनों फौजी अफसरान सरकारी मिशन पर थे। दफ्तर ने एक्सपर्ट पोस्ट में कहा सदर फ्लेक्स इसकदी ने हादसे की तफसीलात वजह मालूम करने के लिए मुकम्मल तफ्तीश का हुक्म दिया है। उन्हें मुतासरीन के अहले खाना और वाकिन समेत सिक्योरिटी फोर्सेज से दिली ताजियत भी की है। इसके साथ इस तरह तुर्किया से खबरें खत्म हुई।